0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

नया नियम न्यू टेस्टामेंट में टार्टरस शब्द का इस्तेमाल पूरे पाठ में केवल एक बार किया गया है। ये उल्लेख दूसरा पत्रोस 2 अध्याय का आयत 4 में मिलता है। बाइबल का इन पद 2 पत्रोस 2:4 में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा बल्कि उसे नरक टार्टरस के अंधेरे गड्ढों में फेंक दिया और न्याय के दिन तक रखे जाने के लिए सौंप दिया। नोट, यूनानी मूल पाठ में यह क्रिया रूप टार्टरस से उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है टार्टरस में कैद करना। हिंदी अनुवादों में इस आमतौर पर अधोलोक या अंधियारे कुंड के रूप में लिखा जाता है। इस संदर्भ का हनोक की किताब के संबंध है। नया नियम में इस शब्द का इस्तेमाल सीधे तौर पर हनोक की किताब की घटना से जुड़ा हुआ है। गिरे हुए दूतों की सजा, प्रेरित पत्रस ने यहाँ उन्हें स्वर्गदूत वाचर्स का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने नूह के समय में पाप किया था, जैसे हनोक अध्याय 6:10 में वर्णित है। अंधकार की जंजीर हनोक की किताब की तरह पत्रस भी बताते हैं कि इन पाप करने वाले दूतों को मुक्त नहीं छोड़ा जाता है बल्कि उन्हें टार्टरस पातल के अंधेरे गड्ढे के भीतर अंतिम न्याय के दिन तक जकड़ कर रख गया है। यहूदा की पत्री जूड 1:6 से इस समानता है कि बाइबल की यहूदा की पत्री में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है, जहां लिखा गया है कि जिन दूतों ने अपना पद छोड़ दिया था उन्हें अनंत जंजीरों में अंधकार के भीतर न्याय के दिन तक रखा गया है। पत्रस ने भी ग्रीक भाषा बोलने वाले पाठकों को यह समझाने के लिए टार्टरस शब्द का चुनाव किया है। जिस प्रकार ग्रीक कथाओं में टार्टरस अलौकिक बंदियों की जेल थी, उसी प्रकार परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को भी एक विशेष अलौकिक कारागार में बंद कर रखा है। अनोखी किताब विशेषकर द बुक ऑफ वाचर्स अध्याय 17:36 और एस्ट्रोनॉमिकल बुक अध्याय 72:82 में ब्रह्मांड की एक अत्यंत विस्तृत और त्रिस्तरीय भूगोल प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन यहूदी अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड भौतिक न होकर अलौकिक संरचनाओं, गुबंदों और स्वर्गदूतों द्वारा संचालित व्यवस्था पर आधारित है। पृथ्वी और आकाश का ढांचा, फ्लैट अर्थ एंड फायरमेंट, सपाट पृथ्वी। अनोखी किताब के अनुसार पृथ्वी गोल न होकर एक चौकोर या सपाट धरातल है जिसे चारों कोने में चारों किनारे है। आकाश का गुबंद फायरमेंट वर्ल्ड पृथ्वी के ऊपर के एक ठोस पारदर्शी गुम्बज या छत्र है जो आकाश को संभाले हुए है। इस पर खंडकीय या द्वार पोर्टल गेट बने हुए है। हवा के खम्भे पिलर ऑफ अर्थ एंड वेंड्स ब्रह्मांड को संभालने के लिए ईश्वर ने हवा का शक्तिशाली खम्भे बनाया है जो आकाश की गुम्बद को टिकाए रखते हैं और सूर्य चंद्रमा और तारों की चाल को नियंत्रण करते हैं। दूसरा, सूर्य चंद्र और नक्षत्र का चक्र, एस्ट्रोनॉमिकल पोर्टल्स। अनोखी किताब के अध्याय 72 से 82 में खंगोल इंडो का भी चाल को भौतिक नियमों के बजाय स्वर्गदूतों द्वारा संचालित द्वार पोर्टल के माध्यम से समझाया गया है। पूर्व और पश्चिम के द्वार आकाश के गुम्बद में 6 पूर्व में उगने के लिए और 6 पश्चिम में डूबने के लिए कुल 12 द्वार है। ऋतुया और दिन रात सूर्य वर्ष के अलग अलग महीनों में अलग अलग द्वारों से निकलता है। इसी बदलाव से दिन और रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतुएं बदलती है। सब बनाम चंद्र कैलेंडर हनोक 1364 दिनों के परफेक्ट सोल कैलेंडर की वकालत करता है और चंद्रमा के 354 दिनों के चक्र को थोड़ा अपूर्ण मानता है। पाताल लोक और आत्माओं का स्थान, सोल एंड अंडरवर्ल्ड। अनोक जब पृथ्वी के पश्चिम छोर पर जाता है तो उसे पाताल सियोल का भूगोल दिखाया गया है। अध्याय 22। 4 अलग अलग गुफाएं। मृतकों की आत्माओं के अंतिम न्याय के दिन तक अलग अलग 4 गहरे गड्ढों में रखा गया है। धार्मिक आत्माएं जहां रोशन और पानी का बढ़ता झरना है, अब्राहम की गोद। साधारण धार्मिक जो न्याय के इंतजार कर रहे हैं, पापी जिन्हें सजा मिल चुकी है जिन्होंने जीवन में अपने कर्मों का फल पा लिया है, और पापी जिन्होंने अंतिम न्याय के दिन महाअग्नि में फेंका जाएगा। गिरे हुए दूतों का कारागार टार्टरस और एफसी पृथ्वी की सीमाओं के पार एक ऐसा स्थान है जहां न आकाश है न जमीन बल्कि केवल भयंकर आग और अंधकार की खाई है, जहां अजाजेल और 200 दूतों की 70 पीढ़ियों तक बांधा गया है।
स्वर्ग और ईश्वर का सिंहासन। अनोक का यात्रा करते हुए आकाश के ऊपरी पर्वत स्वर्ग तक पहुंचाता है। बहुत स्तरीय वर्ग अनोक में स्वर्ग के कई स्तर 7 या 10 स्तर विशेषकर अनोक की दूसरी किताब में बताया गया है। अग्नि का घर और बर्फ की दीवार, ईश्वर का निवास स्थान, एक ऐसा महल जैसा है कि जो आग की लपटों से घिरा है, फिर भी उसी नींव और दीवार बर्फ और औलों की जैसी ठंडी है। ईश्वर का सिंहासन जो नीलम और क्रिस्टल की तरह चमकता है, उसे नीचे से आग की नदियां बहती है और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत करोबिम और सराफिम उस सिंहासन की निरंतर आराधना करते हैं। फिर वहाँले लेख्नु भएको छ र यो जो हनोकको पुस्तकको कुरा गरिएको छ, यो चाहिँ एक अपोकालिप्टिक पुस्तक नभएर एक काल्पनिक पुस्तक हो भनेर कति बाइबल विद्वानहरूले भन्ने गर्दछन्। र त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को एउटा स्टाटस परेको छ प्रकाश विक ज्यूको, जसले फेसबुक क्रिस्चियन नेटवर्कबाट लेखेर पठाउनु भएको छ र उहाँ लेख्नुहुन्छ, क्रिस्चियन अभिवादन जय मसीह, तपाईँको लागि आजको घोषणा, तपाईँको सपनाहरू परमेश्वरको हातमा छन् भनेर उत्पत्ति 37:19-20 पठाउनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाडलमा फालिदिउ, जंगली पशुले खाएछ क्यारे भनी हामी भनौ र त्यसको सपनाहरू के हुँदो रहेछ हेरौंला। प्रसंग हो, योसेफको सपना र त्यो छेडिक विफल भए झैं देखिन्थ्यो, तर योसेफले परमेश्वर समाति रहे र योसेफलाई थाहा थियो कि परमेश्वर आफ्नो भविष्यलाई निर्धारण रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर। उत्पत्ति 50:20 भन्छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यस कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। योसेफले आफ्नो भविष्यलाई आफ्नो समस्याको बावजुद पनि फलिफाप भएको देखे, किनकि उनको विश्वास परमेश्वरमा थियो र कुनै चीजमाथि पनि राखेका थिएनन्। यसकारण हे प्रभु, तपाईँ मेरो लक्ष्य हुनुहुन्छ र म मेरो सपना र आशाहरू तपाईँमाथि राख्छु। आमेन। परमेश्वरले तपाईँको जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ जब तपाईँ सपना र दर्शनहरू शत्रुले खोसेर पनि लान छैन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र अगाडि लेख्नुहुन्छ, आजको दिन परमेश्वर तपाईँलाई हजुरको परिवारमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ भने यतिखेर मेरो हातमा बाइबल डेली नामको फेसबुक पेजबाट अर्को एउटा स्टाटस आएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं न यहाँबाट केही लैजान सक्छौ, तर खान र लाउन सम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्नेछन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशतिर डुबाउँछन्, किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेका छन्। 1 तिमोथी 6:6-10 भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु भएको होस्। आदरणीय श्रोता, त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को एउटा स्टाटस परेको छ जसलाई प्रेषित गर्नुभएको छ कविता मुखियाज्यूले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, तर म चाहिँ तपाईँको शक्तिमा स्तुति गाउनेछु, बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरण स्थान हुनुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँको स्तुति गाउनेछु, हे परमेश्वर तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो प्रेमी हुनुहुन्छ, भजन संग्रह 59:16-17 भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र भने फेरि पनि आजको कार्यक्रममा एउटा मिठो गीतको साथ दिने बेला भइसकेको छ र गीतपछि म पुनः आउनेछु। अहिले भने सुनौ एउटा सुमधुर भक्ति गीत।